इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते हैं।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: महामाया आदिशक्ति जगदम्बा माँ दुर्गा भवानी के महापर्व नवरात्र में आज हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम सभी भक्त मिलकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

0: करनी, थोड़ा आदमी नू टाइम काढ़ना चाहिए, फिर कुश्ती कबड्डी का भी टाइम काढ़ना चाहिए, घोलना भी चाहिए, कबड्डी भी खेलनी चाहिए, क्योंकि नाम रोशन होता है, जो आदमी काम करता है उसका नाम रोशन होता है। सरकार की तरफ से हमारे गांव के अंदर कोई ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए जितना कोई दंगल हो और कोई बाहर के बेचारे सिखाने के लिए आए, तो यहाँ कोई प्रोग्राम जरूर होना चाहिए हमारे फतेहपुर के अंदर, क्योंकि यहाँ छोकरू हमारे गांव के अंदर इतने भी आदमी नहीं है, बच्चे भी ठीक हैं वैसे तकरीबन, पर आजकल भवना के पीछा जाना पड़े हुए हैं, काम नहीं करते, भवना वारा इसदा करे जा, वैसे होनी चाहिए जी हमारे गाँव में कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए फतेहपुर गाँव के अंदर।
1: तो बाबा जिस तरह आज के टाइम में कुश्ती लगा तो उसमें क्या इनाम देवा आप?
0: इनाम 21,000 भी दे दें, 31,000 भी दे दें, भाई जैसा प्रोग्राम होता उसे करते हैं, और भाई अंगूठी भी देते हैं सोने की, और मेडल भी देते हैं चांदी का, LCD वगैरह भी दे देते हैं, भाई जैसा पुख्ता है उसे करते हैं, जरूर करते हैं पहलवानों के लिए, मान सम्मान करते हैं उनका। 1,000-1,100 से कम तो कुश्ती होती नहीं, क्योंकि ये तो जरूरी है, बड़ा प्रोग्राम है जी, तो बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगी, सब गांव वाले मदद लगे कर, पूरी गांव पूरे सहयोग देता है, सारा बच्चा बच्चा गांव का।
1: तो जिस तरह पता लगा भी बाबे ने इस कुश्ती की शुरुआत में एक गड़ी ते करी थी, गड़ी नाम रखा था, और आज के टाइम में वही नाम 41,000 और 50,000 वहां तक पहुंच गया। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मेरे ते इतनी जानकारी दी और अपने बारे में बताया और अपने संघर्ष के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: नॉर्थ लगे, नौ नॉर्थ है।
1: ठीक बात दादी। तो दादी मनु न्यू बता, बीजोन से सांझिया इसनु लगाने की क्या मान्यता है? भी इसनु क्यों लगाया जा और क्यों मनाई जाया?
0: बच्चा तो रीत भी अपनी मान्यता ना देवी की, किसी नु वफादारी भी दे दिया, हार इसकी तो देवी की पूजना भी करा। जय का देख लेता हूँ, हाँ कितनी पूजना हो रही तो लोक पर, किसी नु वर भी दे रही है, बस तो अपना कर्म।
1: ठीक बात दादी। तो दादी ये सांझी हुआ है जोन सी या देवी हुआ?
0: हाँ देवी हो आया या देवी हो आ समझी।
1: ठीक बात दादी। तो दादी तो इसनु नहीं उपता अभी कद ते मना रहे थम इसनु सांझी नु?
0: ये सुनो क्या अभी मर जमने से पहला किया या कभी, मारी मार ने लाई होगी, मारी दादी ने लाई होगी, ये तो चलो रही।
1: तो दादी कोई गीत या भजन भी गावा इसका सांझी का?
0: बस ये कौन गावा बच्चे, भी नहीं कोई गांधी है, वो तो कभी गाय करते मारे जमाने में भी नहीं गांधी है कोई,
1: तो दादी तनु कोई सांझी का भजन या गाना भी आवा?
0: बस यो ही है गाना तो। सांझी मेरी मांगा ये नौमन गहना, सुनियारा का बैठिए ले उठी नौमन गहना, ले मेरी सांझी ये नौमन गहना, सांझी मेरी मांगा अनाहन की कंगी, मैं नाहन में बैठिए ले मेरी सांझी या कंगी अपने, ने काय करा दिया मैं तो, सांझी मेरी मांगा है जूता, मैं बैठी चमोटी का ले उठी मैं इक्का बूटा, जूते नु कहा बूटा, ले मेरी सांझी ओ अपना जूता, बस ने काय करा दे बच्चे हम तो क्या, बस तेरी की तरह फिर काय कहा सुन लग
1: ठीक बात है दादी। तो
0: जाती।
1: दादी तो क्या कहना चेहरी मसांजी नु भी इसका श्रृंगार बतेरी तो कंगी जूते हैं।
0: और यो श्रृंगार हो अभी श्रृंगार है यो संजी का,
1: तो दादी जो सी सांझी होया द्वार पर कितने दिन तक रहा? तो
0: नौंदन
1: जिस तरह द्वार पर लगी रहा फिर बाद में इसनु तार का फिर क्या करा?
0: इनो तार का जोड़ी मावा घेर का, अरे रोटी बांधा के पल्ला जो बांधा ही, और मोहन छकार का घेर का जोड़ी मा दसवां दशहरा बात।
1: ठीक बात दादी। तो सांझी गेल एक पेटू ओ आज इस तरह यो और कौन लगावा सरदार की इस तरह हुआ कुछ?
0: बस मारो तो बच्ची एक टिकड़ी रखा, पहला मैं चांद वे कराते और चांद रख लेते और सारी जा, वो पीछे ते वो सतिया भी लावा ना सांझी तार का, बस या नौंदन तो सौरिया का रहा और फिर या साल बाप का रहा सांझी,
1: अच्छा इसके पीछे क्या बात अभी 9 दिन सोरिया का रहा फिर अपने बाप का?
0: क्या पता अभी क्या दुनिया ने रीत चलाई।
1: ठीक बात दादी। तो दादी मैं तेरे ते बस न्यू पूछना चाहूं भी कोई पूजा भी कराया कोई व्रत कुछ चीज मांगा इस पदे सांझी पते?
0: मांग लें भी मेरी यह बात पूरी कर दिए, अपने घर में होमन करवा दे देवी का, पंडित बैठावा फिर रोज चल कुछ बर भी दे देवी, चल ही तो करो तने देवी तो देखी नहीं है तो लोक पर कड़ी बड़ी अड्डी सोने की टुम्मा पड़ रही असली, जल मल करा
1: तो ठीक बात दादी। और जिस तरह सांझी अपने घर रोज इसकी पूजा करा इस भोग लगावा इसमें?
0: हाँ, साल पीछा हुआ गया बेचारी, साल पीछा हुआ गया फिर नौ दिन रहा सोरे का, सारे तुम्हारे साल पिछावा ने, जद इसका रण का मेला भी हुआ ना, जद खत्म हुआ ने सारे तुम्हार कर वे जकरिया दुआली गोदन हर भैया दूज।
1: ठीक बात दादी। तो दादी जिस तरह तो तन्ने सारी बात बता दी सांझी के बारे में भी किस तरह लगावा और क्या इसकी मान्यता हुआ।
0: हाँ
1: तो दादी जोन सा हमारा आज का टाइम और जोन सा थारे टाइम मा था भी त्योहार में कितना फर्क पड़े यार, तो क्या कहना चाहगी मारे आज के टाइम वास्ता?
0: आज के टाइम में कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करता, ने तुम्हारे वर्गे बुजुर्ग कर रहे पिछले तुम्हार हारी तो ने सारे अट दे जा रहे, तेरे वर्गे इस पर कोई नहीं कर दिया है बस, ने तो पिछले बंदे कर रहे हो इबने खत्म होते जा रहे पिछले बंदे, गाड़ी मारी जवानी करने की बने जा रहे ने तुम देखा तुम।
1: ठीक बात दादी। तो दादी बहुत बहुत धन्यवाद, तन्ने मेरे ते इतनी जानकारी दी, हमारे श्रोता नु बहुत जानकारी दी।
0: हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्वा, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर अन्नु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। सितंबर के अंत में सरसों की बिजाई के लिए अभी से खेत तैयार कर लें किसान। कृषि विशेषकों की सलाह पर बीजों उपचार के बाद करें बिजाई। सरसों रबी में उगाई जाने वाली फसलों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सरसों वर्गीय फसलों के तहत तोरिया, राया, तारामीरा, भूरी व पीली सरसों आती है। सरसों की बिजाई के लिए किसान खेत को अच्छे से तैयार कर लें। सितंबर के अंत में सरसों की बिजाई आरंभ हो जाती है। तिलहनों की बिजाई सिंचित क्षेत्रों में 1 किलोग्राम व बारानी क्षेत्रों में 1.25 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेकर कतारों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बिजाई पोरा विधि से इस प्रकार करें कि बीज 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना पड़े। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने बताया कि सरसों को तना गलन रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीज को 2 ग्राम कार्बनडाइजिम नामक दवा से प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। बिजाई के समय सिंचित सरसों में 35 किलोग्राम यूरिया और 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में पोर दें। बाकी 35 किलोग्राम यूरिया पहली सिंचाई के समय डाल दें। बारानी इलाकों में सरसों के लिए 35 किलोग्राम यूरिया व 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ही चुनें। यदि फास्फोरस DAP द्वारा डालें तो खेत को तैयार करते समय ही 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ बिखेर कर खेत में मिला दें। यदि जमीन में जस्ते की कमी हो तो प्रति एकड़ बिजाई के समय 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम सूखी भुरभुरी मिट्टी में मिलाकर खेत को तैयार करते समय मिला दें। राया में एजोटोबैक्टर के टीके का प्रयोग लाभदायक रहता है। सरसों की इन किस्मों की करें बिजाई। सरसों अनुभाग में विशिष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर राम अवतार ने बताया कि राया सरसों की RH30, RH8812, RH406, RH749, RH725, RH761, RH1424 और RH1706 व पीली सरसों की किस्म YSH401 ही बोएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सरसों की एक और उन्नत किस्म RH1975 विकसित की है। यह किस्म सिंचित क्षेत्र में समय पर बिजाई के लिए एक उत्तम किस्म है। इसके अलावा सरसों की हाइब्रिड किस्म RHH2101 भी सिंचित क्षेत्रों में समय पर बिजाई के लिए विकसित की है। फसल में कीटनाशकों का छिड़काव दोपहर बाद करें। किसान सरसों की बीमारी की समय पर रहते अच्छी तरह पहचान कर उनका आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। अगेती व पछेती सरसों की फसल में कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जिनकी किसान समय से पहचान कर रोकथाम कर फसल से अधिक पैदावार हासिल कर सकते हैं। किसान फसल की बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशक हमेशा सायंकाल को 3 बजे के बाद करें, ताकि मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना हो, जो उपज बढ़ाने के लिए सहायक होती हैं। लहसुन की बिजाई का 15 अक्टूबर तक सही समय। अच्छी किस्मों का चयन करें। कंद बड़े होंगे। जमीन की 2 से 3 बार जुताई करके समतल जरूर कर लें। सर्दियों के मौसम में लहसुन की बेहतर पैदावार लेने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर तक लहसुन की बुवाई का समय सबसे उपयुक्त होता है। समय रहते की गई सही तैयारी, उन्नत किस्मों का चयन और उचित प्रबंध न केवल फसल को रोगों से बचाता है, बल्कि कंदों का आकार और वजन बढ़ाकर बंपर उत्पादन भी सुनिश्चित करता है। NHRDF सलारू केंद्र के प्रमुख डॉक्टर आलोक सिंह ने बताया कि सर्दियों की फसल के लिए क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल उन्नत किस्मों एवं प्रमाणित बीजों का ही चुनाव करें। लहसुन की अगेती बिजाई के लिए यमुना सफेद 1 जी 1, यमुना सफेद 2 जी 50, यमुना सफेद 3 जी 282, यमुना सफेद 4 जी 323 और यमुना पर्पल 10 जी 404 जैसी किस्में बेहतर मानी जाती हैं। इनके कंद ठोस, सफेद और बड़े आकार के होते हैं, जबकि यमुना पर्पल 10 का रंग पर्पल व धारी युक्त होता है, जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। 2 से 3 बार खेत की जुताई कर गोबर की खाद डालें। लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है, इसलिए मिट्टी का भुरभुरा और हवादार होना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाली हल से एक गहरी जुताई करें, जिससे पिछली फसल के अवशेष दब जाएं और जमीन की निचली परत खुल जाए। इसके बाद कल्टीवेटर एवं हैरो के माध्यम से 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगाएं, ताकि जमीन समतल हो जाए। इसके उपरांत रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी को भुरभुरा कर लें। अंतिम जुताई के 15 से 20 दिन पहले प्रति एकड़ 8 से 10 टन अच्छी तरह गोबर की खाद या 2 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट खेत के समान रूप से बिखेर कर मिला दें। जमीन में जल निकासी का अवशेष ध्यान रखें। खेत में जल भराव के कारण मिट्टी सख्त हो जाती है, इससे कंद के विकास में अवरोध होता है। रोपाई की उचित विधि। समतल खेत में 15 सेंटीमीटर ऊंची और उचित चौड़ाई की मेड़ें राइज्ड बेड तैयार करें। लहसुन की कलियों को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए, जिससे कंधों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिले। खाद एवं उर्वरक। फसल के लिए खाद की उचित मात्रा के रूप में नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम एवं पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। अच्छी पैदावार के लिए खड़ी फसल में बुवाई के 30, 45 एवं 60 दिनों के बाद 1% 19:19:19 पॉलीफीड 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर एवं 75, 90 व 105 दिन के बाद 2% मल्टी के नामक फोलियर फर्टिलाइजर का उपयोग जरूर करें। 74 की उम्र में भी खेती का जज्बा। 14 एकड़ में बागवानी व 19 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे बाग से ही फल ले रहे खरीदार। 33 एकड़ में बिना रासायनिक खाद के खेती कर रहे आरएस चौहान। राजस्थान सीमा से सट्टे खंड के गांव काटी में 2015 में 74 वर्षीय पूर्व डीआरजी आरएस चौहान ने सेवानिवृत्ति के बाद प्राकृतिक खेती शुरू की। आज उन्होंने 33 एकड़ भूमि को पूरी तरह प्राकृतिक खेती और बागवानी का मॉडल बना दिया है। इसमें 14 एकड़ में बागवानी और 19 एकड़ में सरसों, चना व बाजरे की खेती की जा रही है। खास बात यह है कि खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे उपज खरीदने के लिए हरियाणा और राजस्थान से खरीदार सीधे खेत तक पहुंचते हैं। खेत में भूमिगत जल काफी गहराई पर है और पानी की उपलब्धता सीमित है। ऐसे में उन्होंने अधिक पानी मांगने वाली फसलों के बजाय कम पानी में तैयार होने वाली फसलों और फलदार पौधों को प्राथमिकता दी। बागवानी में 4 एकड़ में एप्पल, बेर, 2 एकड़ में अमरूद और 1-1 एकड़ में जामुन और बेल के पौधे लगाए हैं। सीधे खरीदार आने से उपज को बिचौलियों के बजाय सीधे बाजार तक पहुंचने में मदद मिलती है। पूर्व डीआरजी चौहान के अनुसार प्राकृतिक खेती और बागवानी व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित हो रही है और इससे रासायनिक खाद पर होने वाला खर्चा भी बचता है। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: कुछ अच्छा सुनते हैं। FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: जॉय मुखर्जी।

जोय मुखर्जी का जन्म झांसी में 24 फरवरी सन 1939 को हुआ था। अपनी पढ़ाई देहरादून में मुकम्मल की। अपना फिल्मी करियर सन 1960 में फिल्म लव इन शिमला से शुरू किया था। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी साधना। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जॉय मुखर्जी को रोमांटिक आइकॉन के तौर पे एक खूबसूरत पहचान मिली थी। फिल्म लव इन शिमला के बाद सन 1963 में फिल्म आई फिर वही दिल लाया हूँ, सन 1964 में जिद्दी, सन 1966 में लव इन

सन 1967 में शागिर्द और एक मुसाफिर एक हसीना। उस वक्त की टॉप हीरोइनों में आशा बारिक, सायरा बानो और साधना के साथ जॉय मुखर्जी को काम करने का बेहतरीन

जॉय मुखर्जी ने नीलम के साथ शादी की थी। मोनोजॉय और सुजॉय जॉय मुखर्जी के दो बेटे हैं और जॉय मुखर्जी की एक बेटी भी।

0: के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत
1: जोय मुखर्जी की होम प्रोडक्शन में फिल्म हमसाया और एक बार मुस्कुरा दो, ये दोनों फिल्में कामयाब साबित हुई।

राजेश खन्ना और जय मुखर्जी दोनों दोस्त थे। राजेश खन्ना ने फिल्म इंसाफ मैं करूंगा में जॉय मुखर्जी को विलन का रोल ऑफर किया। फिर क्या था, जॉय मुखर्जी ने ये रोल एक्सेप्ट किया और फिल्म कामयाब

0: है
1: यही तो मालूम नहीं है
0: हमसे सुनो।
2: फिल्म लव इन शिमला, हम हिंदुस्तानी, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, आओ प्यार करें, जी चाहता है, इशारा, जिद्दी, दूर की आवाज, बहु बेटी, लव इन टोक्यो, ये जिंदगी कितनी हसी है, साज और आवाज, शागिर्द, एक कली मुस्काई, हमसाया दिल और मोहब्बत, दुपट्टा आग और दाग, एहसान, इंस्पेक्टर, मुजरिम, पुरस्कार, कहीं आर कहीं पार, एक बार मुस्कुरा दो, हैवान, छेला बाबू, फूलन देवी, इंसाफ मैं करूंगा, लव इन बॉम्बे, ये कामयाब फिल्में साबित हुई जिसमें जॉय मुखर्जी ने बेहतरीन अदाकारी के जलवे अपने चाहने वालों तक पहुंचाए।

जॉय मुखर्जी अपने जमाने के सबसे खूबसूरत एक्टर माने जाते रहे हैं। 6 फुट 2 इंच उनका कद था, गोरा रंग और उनकी अदाकारी लाजवाब, बेमिसाल सब।

72 साल की उम्र में 9 मार्च सन 2012 जॉय मुखर्जी मुंबई के लीलावती अस्पताल में इस दुनिया को अलविदा कहा। जॉय मुखर्जी एक खास बीमारी में मुब्तला

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: हर मोड़ पा हंसी खुशी और मीठे मीठे सुरा की तान, सीधे थारे दिल पर चोट मारेगी। यो सै रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पा, जिंदगी का सांझा साथी, थारे जी का सच्चा आधार। बस गेल बने रहो और जिंदगी के पूरे मजे लो।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किद्दी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के इस रंगमंच पर हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और हर कहानी के बीच कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें सोचने, महसूस करने और जीने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ खास पल जिनमें है बात, जज्बात और एक नया नजरिया। मैं हूं किरणी और पेश है कार्यक्रम रेडियो पॉडकास्ट विद किरणी। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज का टॉपिक है स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से गर्दन टेढ़ी हो सकती है। स्मार्टफोन से गर्दन टेढ़ी, 60 डिग्री झुकने से 27 किलोग्राम तक बोझ पड़ता है। हो रहा असहनीय दर्द, जब सिर को झुकाते जाते हैं तो गर्दन व रीढ़ पर भार बढ़ता जाता है। स्मार्टफोन की लत आंखों या मानसिक तनाव तक सीमित नहीं रही, ये पूरे शरीर पर असर डाल रही है, खासतौर से गर्दन व रीढ़ पर। लुधियाना के प्रमुख अस्पतालों में हर माह 300 से ज्यादा मरीज स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण पहुंच रहे हैं। गर्दन में असहनीय दर्द, अकड़न, मांसपेशियों में खिंचाव व नसों पर दबाव जैसी समस्याएं आम हो रही है। इन मरीजों में 6 साल के बच्चे से 70 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। बच्चों में ये आदत पढ़ाई व गेमिंग के बहाने आती है, बुजुर्गों में ये सोशल मीडिया, न्यूज जानने की चाह में आ रही है। समय रहते स्क्रीन टाइम घटा ले, वरना आखिरी विकल्प गर्दन की सर्जरी है। टेक्स्ट नेक क्या है? जब लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन पर झुके रहते हैं तो गर्दन और रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों पर तनाव बढ़ता है, फिर दर्द और अकड़न होती है। इससे रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों पर स्थायी असर पड़ता है। ये अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करती है, कंधों पर भी असर पड़ता है। सिर दर्द, हाथ सुन होना, मांसपेशियों में खिंचाव व मानसिक तनाव हो सकता है। मोबाइल पर झुककर देखने से आंखों पर भी असर पड़ता है, जिसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। स्मार्टफोन का उपयोग करते समय अपनी गर्दन को सीधा रखें और स्क्रीन को आंखों के सत्र पर लाएं। हर दिशा में ऊपर नीचे, बाएं और दाएं अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें। नियमित रूप से ब्रेक लें और अपनी गर्दन को हिलाएं। एक मजबूत कोर और अच्छी मुद्रा बनाए रखें। यदि आपको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लें। उपचार, हल्के मामलों में आराम, स्ट्रेचिंग और मुद्रा में सुधार से राहत मिल सकता है। गंभीर मामलों में शारीरिक चिकित्सा, दवाइयां या सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, कहानियां खत्म होती है लेकिन उनके जज्बात हमारे साथ रहते हैं। उम्मीद है कि आज की बातें आपके दिल तक जरूर पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए रंग, एक नए सुर और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मेरी तू मेरी हो, रूह मेरी तू मुझ में खो, रूह मैं तेरा आशिक हूँ, रूह मैं तेरा शायर हूँ, तेरे लिए मैं लिखता हूँ, तेरे लिए मैं सोता हूँ और तेरे लिए मैं जगता हूँ, रूह तू मुझ में बहती है, फिर क्यों नहीं कुछ कहती है, खामोशी को अब तू छोड़, दुनिया से अब नाता तोड़, रूह मेरी तू अब कुछ कहे, बहुत हुआ अब मत चुप रह, मत रह अब तू बिल्कुल गुमसुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, ये जो मेरी सांसें हैं तेरे लिए ये चलती हैं, दिल में जो ये धक धक है कुछ नहीं तेरी आहट है, रूह मेरे जीवन की डोर तुझसे बंधी है और से छोर, रूह तू मेरी ही रहना, रूह तू मुझ में ही बहना, मेरे लिए सब कुछ सहना, रखना मुझको खुद में तुम, रूह तू मेरी ही रहना, रूह तू मुझ में ही बहना, मेरे लिए सब कुछ सहना, रखना मुझको खुद में तुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, ये जो मेरी जीवा है तेरे लिए ये कातर है, रूह रूह ये करती है, खामोश नहीं ये रहती है, सचमुच बिल्कुल पगली है, रूह रूह की इसकी रट बिल्कुल भी नहीं बदली है, रूह तू इसकी रट को सुन, कुछ मत सोच इसे बस चुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, ये जो तेरी चाहत है ये दिल में मेरे बसती है, यादों के ये दीपक बनकर आंखों में मेरे जलती है, श्रवणों में तेरा नाम है रूह, नथनों में तेरी खुशबू है, होंठों पर तेरी प्यास है रूह, पौरों पर तेरी हस्ती है, इस दीवाने की दुनिया में तेरी ही है बस रुंझुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

ये जो मेरी आंखें हैं हर दम गीली रहती हैं, खामोशी के साए में चुपचाप बहुत कुछ कहती है। तू इनका जिंदा सपना है, तू इनका बिल्कुल अपना है, पलकों पर इनके तू ही है, पानी के घर में तू ही है, पानी के घर में तू ही है, ये तेरी राह ही तकती हैं, ये तेरे लिए ही सजती हैं, ये तेरी याद में रहती हैं और तेरे प्यार में बहती हैं। इनको बस है तेरी धुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छुपटा ले, दीपक ये जल जाएगा, हाथ नहीं फिर आएगा, खामोश मोहब्बत सिसकेगी, छाती में तेरे धड़केगी, तू चैन बिल्कुल पाएगी, रोते रोते मर जाएगी, बातें मेरी याद आएंगी, बेचैन तुझे कर जाएंगी, रोता मेरा बेबस चेहरा, रोता मेरा बेबस चेहरा, घाव तुझे देगा गहरा, तड़पेगी तब तू जीवन भर, आहट ना मिलेगी मेरी पल भर, तड़पेगी तब तू जीवन भर, आहट ना मिलेगी मेरी पल भर, चला छोड़ जाऊंगा मैं, चला छोड़ जाऊंगा मैं, नहीं के भी आऊंगा मैं, मत होने दे ऐसी बात, रूह तेरे है सब कुछ हाथ।

रूह में तेरा बच्चा हूँ, रूह में बिल्कुल सच्चा हूँ, रूह रची है मुझ में तू, रूह बसी है मुझ में तू, पोरों पर तू ही लिपटी है, रोमों में तू ही पसरी है, बिन तेरे में जल बिन मीन, बिन तेरे में जल बिन मीन, ना मुझसे मेरा जीवन छीन, मुझ जातक की तू है प्यास, तू मेरा जीवन तू मेरी आस, सांस के लिए हवा है जो, मेरे लिए तू है वो, सांस के लिए हवा है जो, मेरे लिए तू है वो, रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू चपटा ले, कर ले मुझको खुद में गुम, हो जा मुझ में खुद भी गुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छप डाले, कर ले मुझको खुद में गुम, हो जा मुझ में खुद भी गुम। रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

हर पल को बनाइए खास सिर्फ बेहतरीन गानों के साथ। ट्यून इन कीजिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। बजते रहेंगे गाने, झूमते रहेंगे आप।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
1: फिल्मी गीतों पर आधारित पेश है प्रोग्राम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपकी कसम फिल्म के गीत के साथ, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

लीजिए अब सुनिए मन की आंखें फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चलते चलते से। गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाना जो वापस फिल्म का है। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं मजरूं सुल्तानपुरी ने।

सभी श्रोताओं के लिए पेश है फिल्म शर्मिली का गाना, जिसे लिखा है नीरज ने, संगीत दिया है SD वर्मन ने और स्वर दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

इस कार्यक्रम का अगला गीत है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

अब आपके नजर है जान निसार अख्तर का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत से सजाया है जयदेव ने। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत और आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गीत की, जो फिल्म त्रिशूल का है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत दिया है खयाम ने।

अब पेश है फिल्म ताजमहल का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसे लिखा है साहिर रिजानवी ने, और संगीत रोशन का है।

इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत। संगीतकार आरडी बर्मन, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं उसका फीडबैक हमें जरूर रेडियो विदस्ता के इस नंबर पर दीजिए। नंबर है 7056413010। सरगम कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज आमंत्रित हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक संभव आजाद। उनसे बात करेंगे भारत सपोरी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं आज एक नया कार्यक्रम जिसका शीर्षक रहेगा इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम उन कलाकारों से बात करते हैं जो कला के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो रंगमंच हो, चाहे वो संगीत हो या कला की कोई भी विधा हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अलग अलग लोगों को स्टूडियो में आमंत्रण देते हैं और हम उनको आपसे रूबरू कराते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे थिएटर की, स्टेज की और अभिनय की। रंगमंच शब्द हम सबने सुना है। रंगमंच दो शब्दों से बना है, रंग और मंच, यानी साज, सजा, संगीत आदि को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना, इसको ही रंगमंच का काम माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि वो मंच जहां पे नृत्य, नाटक, तमाशा आदि प्रस्तुत होते हैं, जिससे मनोरंजन की व्यवस्था होती है। आज हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे अभिनेता जो रंगमंच के साथ जुड़े हैं और रंगमंच के लय में अपने आप को उन्होंने डाला है। वो केवल एक अभिनेता ही नहीं है, वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और खास करके वो लेखक भी है। और जो भी व्यक्ति लेखक होता है या लिखता है तो वो हम सबके दिलों को समझते हैं, जानते हैं। आइए आज मैं आपको हमारे आज के मेहमान से मिलाता हूं। और आज के मेहमान है अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर संभव आजाद। संभव, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम इनसे मिलिए में।
2: सर नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इस प्रोग्राम के लिए बुलाया और मैं रेडियो वितस्ता के जो श्रोता हैं उन सभी का अपने दिल से धन्यवाद करता हूं।
1: संभव, हमारे श्रोता सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में एक छोटा सा विवरण दें कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है।
2: जी सर, कुरुक्षेत्र के एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंडा, ज्यादातर जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने सुना ही होगा, मैं वहां का रहने वाला हूँ। वहीं पे मेरी पैदाइश, वहीं पे मेरी पढ़ाई और लगभग सब कुछ मेरा वहीं पे हुआ है। हालांकि कॉलेज मेरा अम्बाला कैंट में हुआ है। मेरी जर्नी है वो एक्चुअली शाहबाद से ही शुरू हुई थी।
1: आपने कहा कि आपकी जिंदगी की शुरुआत शाहबाद से हुई और शाहबाद होते होते आपके पास दो ऑप्शन थे, कुरुक्षेत्र भी और साथ में अम्बाला भी। आपने कहा कि आपकी जो कॉलेज है वो अम्बाला में हुआ है, तो क्या ये हम मान के चलें कि अम्बाला आपकी जिंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है?
2: बिल्कुल सर, क्योंकि जब मैंने स्कूल पास आउट किया तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कॉलेज कहाँ करूँ, शाहबाद में, कुरुक्षेत्र।

0: लगाव था?
1: देखिए बचपन से एक वो कहते ना वाइब, एक वाइब रहती थी कि हाँ कि मुझे अभिनय करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी। कारण वो माहौल नहीं था, मेरे आस पड़ोस में या मेरे पूरे खानदान में दूर तक कोई अभिनय का कोई नाता ही नहीं था। लेकिन दिल से एक आवाज आती थी कि मुझे अभिनय की तरफ जाना चाहिए। वो आवाज सुनते सुनते सुनते मैं स्कूल पास आउट हो गया, कॉलेज में आया। कॉलेज के टाइम में मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूरी कोशिश की कि नहीं अब मुझे वो करना है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, अभिनय का जो काम है वो बड़ा मुश्किल काम है और इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। और मैं बहुत ही शर्मिला लड़का था। स्कूल के दिनों में अगर मुझे प्रेयर में, सुबह जो प्रेयर होती है ना, उसमें आगे खड़ा कर दिया जाता था तो मेरे पसीने छूट जाते थे कि मुझे आगे कर दिया गया है। या मुझसे कोई सवाल पूछ लेता था तब मैं तो बेहोश हो जाता था कि इसने मुझसे सवाल कैसे कर लिया, भैया मैं क्या जवाब दूं।
2: एक तरीके की शाइनेस थी।
1: हाँ, बहुत बहुत शर्मिला था मैं, बहुत। मैं चार लोगों में कुछ बोल नहीं पाता था
2: जी।
1: तो ये स्कूल के दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे हम बड़े हुए, कॉलेज में आए, लोगों से मिलना जुलना हुआ, बाहर आना जाना हुआ, अलग अलग तरह के लोगों से मिलना हुआ, तो वो शर्म कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे खत्म
2: होती गई।
1: हाँ, कम होती गई। तो एक दिन मुझे मेरे एक दोस्ती कह सकते हैं कि उसने मुझे बताया कि यहाँ पे एक ऑडिशन हो रहा है अंबाला में, पंजाबी फिल्म का ऑडिशन है। अब मुझे पंजाबी नहीं आती थी,
2: ठीक है,
1: लेकिन मुझे शुरुआत करनी थी। मैं ये सोचकर गया उस ऑडिशन में कि मुझे फेल होना है, लेकिन मुझे ऑडिशन होते कैसे हैं इसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा,
2: वहाँ किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के वो सवाल करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही सीखने के मकसद से गया था कि मुझे ये नहीं था कि मुझे काम मिलेगा या मैं वहाँ पे ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाऊंगा। मैं चला गया, ऑडिशन दिया भी, उन्होंने मुझे डायलॉग्स दिए पंजाबी में, हालांकि वो हिंदी में लिखे हुए थे लेकिन लैंग्वेज थी पंजाबी। मैंने रट लिया, जैसे हम आमतौर पर स्कूल कॉलेज में करते हैं, अपने क्वेश्चंस आंसर जो हम याद करते हैं रटते हैं। मैंने रट के उनको सुना दिया। तो जो वो ऑडिशन लेने वाले थे उनको मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना बहुत गजब का लगा। अच्छा। कि इस लड़के को पंजाबी ना आते हुए भी इसने सारे डायलॉग बोले,
2: ठीक है।
1: तो पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने मुझे एक छोटा सा करेक्टर अपनी फिल्म में ऑफर कर दिया।
2: ओके।
1: तो उसका शूट यहाँ पंजाब में हुआ था, एक गाँव में हुआ था। तो वो शूट किया, मेरे अंदर वो शूट करने के बाद, हालांकि वो मैं अभिनय उसमें वो नहीं कर पाया जो एक करना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास आया कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ।
2: यानी कि कॉन्फिडेंस आपको वहीं से आया कि अगर मुझे कोई भी स्क्रिप्ट दिया जाए और उसको मैं तैयार करके उसको डिलीवर कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल, वहां वो मेरा कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि वो आ गया था बस, हालांकि वो पूरा नहीं था
2: जी।
1: लेकिन मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी कि मैं हाँ अब मैं कर सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, लोगों से मिल सकता हूँ, ऑडिशन दे सकता हूँ।
2: जो वो एक बैरियर था वो टूट गया। हाँ। और अब आपको मन ने गवाही दी कि अब आप आगे जा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। उस फिल्म करने के बाद मैं दिल्ली निकल गया। दिल्ली मैंने कई जगह ऑडिशंस दिए, कई जगह मैं सेलेक्ट हुआ। सबसे बड़ी खास बात थी कि वहां पे मैं पंजाबी या दूसरी लैंग्वेज के नहीं देता था,
2: ठीक है,
1: मुझे हिंदी ही मेरी परफेक्ट है, तो मैं हिंदी में ही ऑडिशन दिया करता था जहाँ पे हिंदी प्रोजेक्ट बन रहा हो।
2: तो जब आपने अभिनय की ओर कदम रखा तो आपने फिल्म्स की तरफ गए, अभी आप रंगमंच की तरफ अभी तक आपका जो रास्ता है वो नहीं बना था।
1: नहीं नहीं, रंगमंच से मैं अभी रूबरू हुआ ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था
2: जी
1: थिएटर्स के बारे में
2: जी।
1: दिल्ली में ये सन 2012 की करीब की बात है, जब मैं स्कूल कॉलेज में था, तो वहां पे एक सीरियल मुझे मिला साधना चैनल का। उस सीरियल का नाम था साजन का आंगन। उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, एक नए लड़के को लीड करेक्टर दिया गया था और वो बेसिकली एक नेगेटिव करेक्टर था। वहां भी मैं खुश नहीं था कि आपको पता ही है जो नए लड़के होते हैं या जो अभिनय में जाना चाहते हैं वो हीरो बनना चाहते हैं
2: पहले ही विलन बना दिया
1: मुझे, पहले ही विलन बना दिया। तो दुखी मन से मैंने वो सीरियल का जो है शूट शुरू कर दिया। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, उस सीरियल में लीड हीरो से ज्यादा मेरी चर्चाएं होने लगी थी।
2: बहुत अच्छी बात है।
1: लोग लाइव आकर मुझसे मिला करते थे सेट पर और कहते थे सर आपका अभिनय हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तब मेरी जो वो ये मानसिकता थी ना, ये विलन हीरो या कोई भी करेक्टर ऐसा कोई बुरा नहीं होता,
2: वो विशाल हो गई, वो बड़ी हो गई।
1: बिल्कुल। तब मेरे दिमाग से वो चीज हट गई। अब मुझे कुछ भी मिले, चाहे वो विलन हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो या कैसा भी करेक्टर हो, मैं खुशी खुशी उसको निभाता हूँ।
2: ठीक है।
1: वो सीरियल चला, लेकिन उस सीरियल के बीच एक बहुत बड़ी घटना मेरे परिवार में हुई। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। मैं दिल्ली में शूट कर रहा था, पापा चंडीगढ़ फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल थे।
2: आपको सब कुछ छोड़ के
1: मैं अकेला था।
2: ठीक।
1: मेरे

0: परिवार में मैं अकेला हूँ, तीन बहनें हैं,
1: ठीक है,
0: कोई देखने वाला नहीं था। मुझे शूट छोड़कर बीच में ही मुझे
1: सारा ही काम छोड़ के, हाँ, पहले अपने परिवार के लिए आपको आना पड़ा, ठीक है।
0: मैं कम से कम 20 दिन अस्पताल में रहा, शूट नहीं कर पाया। और उस फिल्म के डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी वजह से उस सीरियल को ही क्विट कर दिया, वो सीरियल बंद हो गया।
1: मतलब वो उसका जो प्रोडक्शन था, हाँ, वो प्रोडक्शन आगे हो
0: नहीं हो पाया, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर, वो विलन कैरेक्टर था ना, हीरो से लीड हीरो से वो मेरे पे आ गया था।
1: ओके,
0: तो वो कंटिन्यू नहीं हो सका, मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते थे वो, तो उन्होंने उस सीरियल को ही डिसकंटिन्यू कर दिया। वहां से चलो भगवान की दया से पापा अच्छे हुए, स्वस्थ हो गए। फिर लगभग कुछ टाइम गुजरा, मुझे इतने इस जर्नी में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जर्नी में मुझे एक बीच बीच में जब मैं शूट करता था ना, तो मुझे एहसास होता था कि कहीं ना कहीं अभिनय में मेरी थोड़ी कमियां हैं, वो कमियों को मैं कैसे दूर करूं। कोई गाइड करने वाला नहीं था, वो सीरियल भी बंद हो गया था, मैं काफी दुखी था कि अच्छा चल पड़ा था मेरा एक,
1: ठीक है,
0: लेकिन उस घटना की वजह से वो सब बंद हो गया था, मैं बहुत दुखी था।
1: ये एक अभिनेता जो बनने वाला है उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल डगर है कि जब उसने जिंदगी में कुछ नया करने का सोचा और आगे की ओर वो चल दिए, और वो अभी काम पूरा होने से पहले ही वो काम अगर बंद हो जाए, या घर में हमें कोई ऐसी स्थिति हो जाए हमें वो छोड़ के आना पड़े, तो एक कलाकार के लिए बहुत ही मुश्किल रास्ता था। तो यहाँ दो चीजें हो सकते थे, या तो आपका जुनून उस काम में और ज्यादा बढ़ गया हो, या उससे आप अपने आप को अलग कर दिया हो। तो आपने किस तरीके से फिर, जब हालात नियंत्रण में हुए, हालात अच्छे हुए, फिर आपने किस तरीके से अभिनय के साथ अपने आप को फिर जोड़ा?
0: उसके बाद जब पापा मेरे ठीक हो गए, तब मैंने अपने करियर को फिर से दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश की। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं क्या करूं। फिर मैं निकला मुंबई, मुंबई गया घूमा, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, हर जगह से मुझे निराशा ही हाथ लगी। मैं वापस मुंबई छोड़कर वापस शाहबाद आ गया। फिर मेरे दिमाग में आई कि अभी मेरे पास वक्त है, अपने आप को मैं निखार सकता हूं। फिर किसी ने मुझे कहा कि आप थिएटर करो, थिएटर से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जो अभी आप में कम है। तब मैं आमतौर पे सब गूगल ही करते हैं, अब मैं सोच रहा था मैं थिएटर कहाँ करूं, मेरे शाहबाद में तो कोई भी थिएटर ग्रुप है ही नहीं।
1: ठीक,
0: मेरा कॉलेज हुआ है अंबाला में, अंबाला के जो कॉलेज था मेरा जीएमएन कॉलेज, वहां पे ऐसा कुछ थिएटर ग्रुप नहीं था। अब मेरे दिमाग में आया कि चलो सर्च करता हूँ, शायद गूगल पे कुछ मिल जाए। तो मैंने सर्च किया, मुझे कुरुक्षेत्र के कुछ थिएटर्स मिले, अंबाला के कुछ थिएटर्स मिले। तब अब मेरे अंदर ये था कि मैं जाऊं कहाँ, कुरुक्षेत्र जाऊं या अंबाला जाऊं, पता नहीं वो मेरे अंदर क्या एक वो कहते ना कि इंट्यूशन आती है, एक वो आई कि नहीं अंबाला ही सही रहेगा, क्योंकि आप अंबाला पिछले 3 साल से लगातार कॉलेज में जा रहे, तो आपको वहां के रास्ते पता है, आपको वहां का हिसाब किताब पता है, कैसे बस से आना है, कैसे बस से जाना है,
1: और दोस्त है, और हाँ, वो रास्ते जो है वो जाने पहचाने
0: हैं। फिर गूगल पे सर्च करते हुए मुझे 3-4 थिएटर्स के नाम आए। मुझे नहीं पता कि मेरी नजर व्यत थिएटर ग्रुप पर कैसे पड़ी, मुझे लगा अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि नहीं मुझे यहाँ बात करनी चाहिए।
1: ठीक है,
0: उस साइट को मैंने खोला, वहां पे कुछ नंबर्स थे, मैंने नंबर को नोट किया, फिर मैंने कॉल किया और तब आपसे बात हुई थी।
1: यहाँ मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि वेस्ट थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला में 2013 मई से कार्य करती है, और हमें इस चीज की बहुत खुशी है कि अंबाला के आसपास के जितने भी कलाकार हैं उनको मंच प्रदान किया वेस्ट थिएटर ग्रुप ने। और बहुत खुशी होती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है और वो आपसे ये कहते हैं कि हम थिएटर करना चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, आई थिंक एक सिखाने वाले के लिए इससे और बड़ी बात कोई नहीं हो सकती थी। और मुझे वो दिन आज याद है जब संभव का कॉल आया और हमने अपने वर्कशॉप पे उनको बुलाया, और वर्कशॉप पे संभव जब आप आए, हम सबके लिए आप नए थे और हम आपके लिए नए थे, तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ जब आपने पहली बार एक थिएटर ग्रुप में कदम रखा?
0: मुझे आज भी अच्छे से याद है जब आपने मुझे बुलाया, जब आपने मुझे डेट दी कि आप आज आ सकते हो, हमसे मिल सकते हो। आई थिंक वो 9 अगस्त 2015 था आपका बर्थडे।
1: आपने तो राज ही खोल दिया।
0: और वो 9 अगस्त आने वाली है, हाँ, 4 दिन के बाद। और कितनी अच्छी बात है कि उसी दौरान मेरा आज इंटरव्यू भी हो रहा है जब मैं प्यार थिएटर ग्रुप से मिला था।
1: जी जी।
0: तो जब मैं आपके थिएटर में आया तब केक वगैरह आया, मैं कहा ये क्या, अभी आज कुछ शायद फंक्शन वगैरह कुछ होगा, तब मुझे पता चला कि आपका बर्थडे है। मैं कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि बर्थडे वाले दिन ही मेरा आपके साथ इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो वो मेरा पहला दिन था जब आपने मेरे कुछ टेस्ट लिए, मुझसे कुछ सवाल पूछे और उन टेस्ट में मैं खरा उतरा, और तब से मैं आज तक आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वेद थिएटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, रेडियो वेदस्ता के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और फ्यूचर में भी मैं जुड़ा रहूंगा।
1: हमें बहुत गर्व होता है संभव आप जैसे कलाकार जिनको वेद थिएटर ग्रुप ने मंच प्रदान किया, और आप अपनी ओर से पूरा प्यार और स्नेह हमें देते हैं। मुझे लग रहा है कि हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी भी कोशिश और हमारी भी इच्छा यही है कि जिसके अंदर एक हिडन टैलेंट है, उस टैलेंट को हम लेके आए। और मैं ये कह सकता हूँ सभी श्रोताओं को कि ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट radiovitasta.com पर भी है कि संभव ने जो भी किरदार वेद थिएटर ग्रुप के साथ प्लेज में निभाए हैं, चाहे वो स्टेज प्लेज थे, चाहे वो फुल लेंथ प्लेज थे, या वो नुक्कड़ नाटक थे, उनमें जितने भी किरदार संभव ने निभाए उनसे हम पूरी तरह से खुश भी हैं और पूरी तरह से गौरवान्वित भी हैं। जिनमें मैं यहाँ जरूर नाम लूंगा, हमने कई सारे प्लेज किए हैं पिछले 10 साल में, और जिनमें से खास करके एक प्ले परिंदा था, और परिंदा के साथ हमारा जो प्रयोग था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिसका शो हमने चंडीगढ़ में किया, अम्बाला में किया। उसके साथ हमने एक नाटक किया रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं पर आधारित काबुलीवाला, उसमें संभव ने अभिनय किया। एक प्ले हमने तोता और आईना किया, उसमें संभव ने अभिनय किया, एक मस्करे का रोल किया जो कि कश्मीरी फोक के ऊपर आधारित था, पर वो प्ले हिंदी भाषा में था। तो हमारी कोशिश ये हमेशा रही कि वेद थिएटर ग्रुप हर तरीके से हर लेवल के प्लेज करके लोगों का मनोरंजन करें और लोगों के सामने एक हमेशा एक नई चीज लेके आए। संभव, सबसे पहले जब आप वेद थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े तो सबसे पहले किरदार आपको करने को क्या मिला?
0: जब मैं आपके थिएटर ग्रुप से जुड़ा तो आपने मुझे सबसे पहला जो करेक्टर ऑफर किया वो था काबुलीवाला में भोला का। जैसा कि मैं आपसे हमेशा शिकायत करता हूँ कि सर मुझे ये करेक्टर पसंद नहीं है, मुझे दूसरा करेक्टर दो, तब आप कहते नहीं संभव आप यही करेक्टर करोगे, इसी को करोगे। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। जब वो प्ले मैंने पहली बार किया तो यकीनन जो तालियां मेरे लिए बजी थी वो आज भी मुझे याद है। आज भी जब लोगों ने मुझे गले से लगाया था या आज भी जब बात होती है तो मेरे उसी करेक्टर भोला के बारे में ही बात होती है।
1: और हमने इस नाटक का शो शिमला में भी किया, और हमने इस नाटक का शो अम्बाला में भी किया, और वहां से आपकी रंगमंच की जो जिंदगी है वो शुरू हो गई। तो जब आप किसी भी किरदार को समझने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से आप उस किरदार में अपने ओर से जान डाल देते हैं?
0: सर सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, अपने करेक्टर के पूरे अंदर तक जाता हूँ कि उस करेक्टर की मांग क्या है, फिर उस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, और उसकी जैसे कि हमारी वर्कशॉप चलती है 30 दिन की या 25 दिन की, दिल से मेहनत करता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके जीवंत कर सकूँ।
1: हम इस कार्यक्रम में ये बातचीत तो जारी रखेंगे, और उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आया है कि हम रंगमंच से थोड़ा सा हटके संगीत की तरफ आए। मैं संभव आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप रंगमंच के अब अच्छे अभिनेता तो बने हैं, हर दिन हमें कुछ नया सीखना होता है। संपूर्ण कलाकार तो हम कभी भी नहीं होते, हम हर दिन ही सीखते हैं और हमें हर दिन ही सीखना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संगीत की लाई को क्या आप पकड़ पाए हैं आज तक?
0: मैंने जैसे पहले बोला था आप फंसाते बहुत और आपने मुझे फंसा ही दिया। संगीत की बात आती है तो देखो सर, संगीत तो हर कोई सुनता है। संगीत एक ऐसी चीज है, चाहे वो थिएटर लाइन से हो, चाहे फिल्म लाइन से हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, संगीत एक दवा है हर एक के लिए, और हर कोई कोने में अकेले में या सबके सामने गुनगुनाना पसंद करता है।
1: जी, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए भी आज अच्छे से कुछ गुनगुनाएं, और वही आपका पसंदीदा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि कौन सा गाना आप गुनगुनाएंगे?
0: वैसे तो सर पसंदीदा गाने तो बहुत हैं, लेकिन जब कोई सवाल पूछ लेता कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है तब दिमाग
1: काम नहीं करता।
0: लेकिन फिर भी मुझे अपने एक बचपन का जो फेवरेट सॉन्ग है वो अभी याद आ रहा है, जिसे मैं बहुत काफी सुनता था और गुनगुनाता हूँ,

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विकसता और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। और आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमान है अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक संभव आजाद। आइए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। और संभव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी अभिनय के सफर की बात की, इस सफर में आपने कौन कौन से प्लेज किए और किन किन शहरों में आपने प्ले किए?
1: सर, प्ले की बात आती है तो परिंदा, काबुली वाला, तोता और आईना, और VTG के साथ ही शॉर्ट फिल्म्स जो मैंने किए।
0: जो आपने ये नाटक और ये जो रंगमंच में जो भी आपने काम किया, क्या आपने वे थिएटर ग्रुप के साथ ही किया या और भी कहीं अलग जगहों पर आपने, खास करके रंगमंच की बात करूंगा, तो क्या आपने कहीं और भी ये किया और किन किन जगहों पर आपने अभिनय किया और अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन किया?
1: सर, थिएटर की बात आती है तो मैंने VTG के अलावा किसी भी थिएटर ग्रुप के साथ आज तक काम नहीं किया है। मैं शुरू ही VTG से किया था और VTG से ही मैंने खत्म किया है सर। और बात आती है सर फिल्म सीरियल की, तो फिल्म सीरियल भी मैंने VTG के साथ ही किए हैं, इसके बाहर भी किए हैं, और एक TV सीरियल नेशनल चैनल के लिए, वो भी मुझे वेद थिएटर ग्रुप यानी कि सर आपकी वजह से ही मुझे मिला था। और इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं ये बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को। थिएटर लगभग मुझे 4-5 साल हो गए थे करते करते, तब मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा सा
0: आगे, करना चाहिए,
1: थोड़ा और आगे मुझे बढ़ना चाहिए। तब मैं मुंबई निकल गया सर। मुंबई निकलने के बाद मुझे वहां एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा सा अभी और सीखना बाकी है। तब मैंने वहां पर एक फेमस इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मुंबई एक्टिंग इंस्टीट्यूट, उसे मैंने ज्वाइन किया। वहां से पास आउट होने के बाद आपका मुझे कॉल आया और आपने मुझे इस ऑडिशन के बारे में बताया, जो कि DD नेशनल के लिए एक सीरियल था, नया कुरुक्षेत्र, जो कि अभी ऑन एयर होकर ऑफ एयर हो चुका है। उसका एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत, मतलब मुझे कि अपने लोकल दर्शकों से बहुत प्यार मिला, जिन्होंने जिसने भी वो कैरेक्टर देखा उसने मेरी काफी तारीफ की।
0: संभव, एक मकसद हमेशा एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन हो, थिएटर ग्रुप हो, उसका मकसद केवल और केवल यही होता है कि जो उसके टीम मेंबर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मिले। अगर अंबाला में एक सीरियल बन रहा था जो हमारे दोस्त बना रहे थे, और जब हम चले गए, मेरा मकसद केवल ये था कि मुझे उस सीरियल में जगह काम करने की मिले या ना मिले, बट मेरी जो टीम है उस टीम के मैक्सिमम लोगों को काम मिलना चाहिए। तो हम इसी उद्देश्य से गए थे, हम अपना ऑडिशन देंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमें कोई किरदार मिले। मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें मैंने तो किरदार निभाया ही, और साथ में मेरे टीम के यानी VTG टीम के 7 कलाकारों ने उसमें अभिनय किया, और सबसे अच्छा करेक्टर और बड़ा करेक्टर संभव आपको उसमें मिला, जहां से आपको बहुत सारा प्यार भी मिला और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो जब ये TV सीरियल जब आपने किया, क्या उसके बाद आपका सोच का दायरा उससे और बड़ा हो गया?
1: जी बिल्कुल सर, वो सीरियल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे हाँ, अब तो वो चीज मुझे मिली है जो मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में चाहता था। जैसा कि थिएटर के दौरान ही मैं स्क्रिप्ट्स भी लिखता था, आपको पता है मैंने कई शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें VTG के कलाकारों को लेकर ही मैं बनाता था, जिसमें आपने अभिनय किया, मेरे और साथी कलाकारों ने अभिनय किया। तो वो जो स्क्रिप्ट लिखने का जो सिलसिला है ना, तब से लेकर आज तक जारी है। और बतौर उसके जब मैंने एक वेब सीरीज की YouTube के लिए, जिसका नाम मृत्युजल 2 था, वो जब OTT पर रिलीज हुई तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था कि मेरे ही बनाई हुई एक OTT पर रिलीज हो रही है।
0: जिंदगी में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब तरक्की मिलती है और एक ऑप्शन मिलता है, तो जहां पर लाखों लोग उस कंटेंट को देखते हैं तो ऑब्वियसली वो एक खुशी का समय होता है। जब आप OTT तक पहुंचे, तो OTT के बाद आपने लेखन पर ज्यादा ध्यान दिया या अभिनय पर ध्यान दिया? आज वर्तमान में आप मुंबई में है, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी श्रोताओं को आप ये भी बताएं कि वर्तमान में आप क्या कार्य करते हैं, वर्तमान में आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम आपको आने वाले दिनों में आपको हम देख सके।
1: सर, जैसा कि आपका सवाल है कि मैं, मेरा फोकस अभी किस चीज पर है, लेखन पर है, अभिनय पर है या किसी और काम पर है? देखिए सर, मैंने तीनों को बैलेंस किया हुआ है। मैं अभिनय पर भी फोकस हूँ, लेखन पर भी फोकस हूँ, और साथ साथ कुछ OTT प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और इसी दौरान सर मैंने एक प्रोजेक्ट लिखा है, टिम्फ्यू। अभी आप सोच रहे होंगे सर, टिम्फ्यू क्या है?
0: टिम्फ्यू स्पेलिंग
1: टिम्फ्यू TIMFEO तो ये वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा सर,
0: जी जी,
1: क्योंकि ये वर्ड एक शॉर्ट फॉर्म है,
0: एब्रिविएशन है
1: जी। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। और इसके जो होस्ट हैं वो है बॉलीवुड के एक्टर हास्य कलाकार श्री राजपाल यादव जी। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एज ए राइटर, और बहुत जल्द ये नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। एक बहुत बड़ा चांस है मेरे लिए।
0: ये इसका जो कंटेंट है ये आपने लिखा है
1: जी,
0: यानी कि इस प्रोजेक्ट के लेखक संभव आजाद
1: जी है। इसका पूरा जो प्रोजेक्ट जो लिखा है वो मैंने लिखा है। और इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा जो इसके प्रोजेक्ट हेड है जिनका नाम है सैयद अब्बास। आप सर यकीन नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी देख कर मैं इतना चकित हुआ। इस एज में उनकी इतनी एनर्जी शायद आज के युवाओं में नहीं होगी। काम करने का जुनून, माई गॉड। मैंने उनसे इतना सीखा कि वो एनर्जी, अब मैं चाहता हूं कि वो एनर्जी मेरे अंदर भी आ जाए। उन्हीं के थ्रू मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। मैं सैयद अब्बास जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में रखा हुआ है, इतने बड़े प्रोजेक्ट का मुझे एक हिस्सा बनाया।
0: देखिए, यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगा वेथ थिएटर ग्रुप के लिए भी एक गौरवान्वित पल है ये कि जो लोग अभिनय करके वीटीजी से आगे की ओर बढ़े हैं और आज एक राष्ट्रीय हमारे एक कलाकार श्री राजपाल यादव जी के साथ काम कर रहे हैं, और लेखन में खास करके, क्योंकि लेखन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और संवेदनशील भी होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम से और रेडियो वितसा टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप शाहबाद को, अम्बाला को, हमें सबको गौरवान्वित करेंगे जब आपका ये प्रोजेक्ट स्क्रीन पे आएगा और लोग आपके कंटेंट को देखेंगे और वाहवाही करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उससे सबसे ज्यादा खुशी हम सबको होगी। तो आने वाले दिनों में क्या आप मुंबई में ही अपने आप को सेटल करेंगे या मुंबई में ही काम करेंगे, या अगर अपने के लिए आपको किसी और जगह पे काम मिलता है तो क्या आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे?
1: देखिए सर, फिलहाल फोकस मेरा मुंबई में ही है। इसके अलावा अगर मुझे कहीं बाहर काम मिलता है तो बाहर काम मैं जरूर करना चाहूंगा टाइम निकाल कर। वैसे सर मेरा जो वर्क है वो मुंबई में ही अच्छा खासा चल रहा है। तो आने वाले दिनों में कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं लिख रहा हूं या आगे लिखने वाला हूं, जिन पर अभी काम चल रहा है सर।
0: हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं और हम संभव जी से एक और प्रश्न करना चाहेंगे। संभव एक युवा है और युवा की सोच रखते हैं, और हमारे देश के लिए युवा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। मैं संभव आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो लोग अभिनय करना चाहते हैं, अभिनय सीखना चाहते हैं और उसके बाद मुंबई जाके वो फिल्म इंडस्ट्री में या मुंबई जाके अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको कितना तैयार होके घर से निकल के वहां जाना चाहिए? क्योंकि शायद कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं फिर शायद पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से आज के युवाओं को अपनी ओर से एक मैसेज दें।
1: देखिए सर, आज के युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कहीं भी काम करें, चाहे वो अपने लोकल काम करें, चाहे वो मुंबई जाकर काम करना चाहें, सबसे पहले अपनी पूरी तैयारी रखें, अच्छे से सीखें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत ही है वो चाबी है जो आपको सक्सेस तक लेकर जा सकती है। जिसके लिए अगर आप अभिनय में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोकल थिएटर करें। अम्बाला में है तो वीटीजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जहां से आपको नए कलाकारों को एक, मतलब कि क्या कहते हैं, एक जो बीज होता है ना, बीज से एक पौधा बनाया जाता है, वीटीजी वो काम करता है। ज्यादातर नए कलाकारों को वीटीजी ने तैयार किया है और आज इतने अच्छे लेवल पर मुंबई में काम कर रहे हैं। कुछ मेरे साथी हैं जो मेरे साथ थे, आज वो मेरे से आगे काम कर रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है।
0: यानी कि जो आपका मैसेज युवाओं के लिए है कि वो पहले अपने आप को अच्छे से परखें, रंगमंच करें, और तैयारी के बाद ही वो अगला स्टेप मुंबई के लिए लें ताकि उनको वहां पर काम करने में, काम मिलने में कोई दिक्कत ना हो।
1: बिल्कुल सर।
0: संभव, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा वीटीजी के लिए, वीटीजी की प्रमोशन के लिए हमेशा आगे आते हैं। आप हमें मान सम्मान देते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हमेशा है। आपने वीटीजी की टीम के लिए भी हमेशा काम किया है, और मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनी पूरी समस्त रेडियो वितस्ता टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप इतनी तरक्की करें जिस तरक्की में हम भी जाने जाएं, पहचाने जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज स्टूडियो में आने के लिए। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम का करता हूं समापन, और इस समापन के बाद हम आपको संभव आजाद के एक और गाने के साथ छोड़ देते हैं, और वो मैं जानना चाहूंगा संभव से कि वो गाना कौन सा हो सकता है।
1: सर, एक गाना मैं अपने देशवासियों को डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश के जो हालात हैं, तो उस हिसाब से मैं यह चाहता हूं कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए सर, किसी भी तरह का बैर नहीं रखना चाहिए, एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी हमारा देश जो है तरक्की करेगा सर।
0: जी, इन शब्दों के साथ ही मैं इस कार्यक्रम का करता हूं समापन, और मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं वो गाने की एक लाइन गुनगुनाना चाहूंगा, तो वो लाइन है मेरे

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान थे रंगमंच अभिनेता संभव आजाद, रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, एडिटिंग निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: धर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

दोस्तों भोजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: यार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने। जो
2: आप सुन रहे हैं अम्बाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर अन्नू, लेकर आई हूँ आज के कृषि समाचार। चेन्नई की 15 अक्टूबर से पहले ना करें बिजाई, उखेड़ा व झुलसा रोग होने का खतरा रहेगा। बिजाई के दौरान रात का पारा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। देसी और काबुली चने की बिजाई 15 अक्टूबर के बाद करें। रात का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कम्बोज ने बताया कि काफी कम बारिश होने के कारण मिट्टी में नमी काफी कम है, इसलिए यह बिजाई करना उपयुक्त रहेगा। HAU वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील गोयल ने बताया कि 15 अक्टूबर से पहले बिजाई करने से उखेड़ा ज्यादा आता है। झुलसा रोग से बचाव के लिए हरियाणा चना नंबर 6 या हरियाणा चना नंबर 7 किस्म ही बोएं। बारानी इलाकों में उन्नत किस्म हरियाणा चना नंबर 1 बोएं। जहां सिंचाई का साधन हो वहां हरियाणा चना नंबर 5, हरियाणा चना नंबर 6 व हरियाणा चना नंबर 7 की बिजाई करें। काबुली की हरियाणा काबुली नंबर 1 और हरियाणा काबुली नंबर 5 किस्म बोएं। कीटनाशक व फफूंद नाशक टीके से करें बीजो उपचार। हरियाणा चना नंबर 3 का 25 से 30 किलोग्राम और अन्य देसी किस्मों का 16 किलोग्राम और काबुली चने का 28 से 30 किलोग्राम व हरियाणा चना नंबर 1 का 16 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ काफी है। बिजाई से पहले बीज का कीटनाशक व फफूंद नाशक टीके से उपचार करें। दीमक से बचाने के लिए 850 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफार्स 36 SL या 1500 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफोस 20 EC को पानी में मिलाकर कुल 2 लीटर घोल बनाएं। ऐसे 2 लीटर घोल से 1 क्वांटल बीज को बीजने के लिए एक दिन पूर्व पक्के फर्श या पॉलीथीन की शीट पर फैलाकर उपचारित करें। इसके बाद फफूंद नाशक बाविस्टिन 2.5 ग्राम या जैविक फफूंद नाशक ड्राइकोडर्मा विरिडी बायोडर्मा 4 ग्राम, वीटावैक्स 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। पोरा विधि से करें बिजाई। खुड्डों का फासला 30 सेंटीमीटर रखें। बिजाई पोरा विधि से करें। दो खुड्डों का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर इस प्रकार करें कि बीज 10 सेंटीमीटर गहरा पड़े। कम गहराई पर पड़ने पर उखेड़ा रोग लगने का भय रहता है। जहां खेत में नमी की कमी हो तो दो खुड्डों का फासला 45 सेंटीमीटर रखकर बिजाई के समय 12 किलोग्राम यूरिया व 100 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति एकड़ ड्रिल करें। यदि DAP मिल जाए तो 34 किलोग्राम DAP ही प्रति एकड़ बिजाई के समय बीज के नीचे ड्रिल करें। चने के बीज को राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं और बहुत रेतीली जमीन में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। मधुमक्खी पालन में 1200 बक्सों से हर साल 8 लाख तक कमाई। शहद उत्पादन के साथ मधुमक्खी और फ्रेम की सप्लाई कर रहे रमेश। करनाल के चोरा खालसा निवासी रमेश सैनी ने करीब 32 साल पहले 11 बक्सों से मधुमक्खी पालन शुरू किया था। अब यह 1200 बक्सों तक पहुंच चुका है। वह खुद शहद का उत्पादन करने के साथ मधुमक्खी और फ्रेम की सप्लाई भी कर रहे हैं। इससे हर साल 8 लाख रुपए तक आमदनी हो रही है। रमेश ने बताया कि पहले वह पारंपरिक खेती करते थे, बाद में पता चला कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI में मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जाती है। वह बड़े भाई नरेश के साथ NDRI पहुंचे। दोनों भाइयों ने प्रशिक्षण लिया और वापस लौटकर 11 बक्सों से काम शुरू कर दिया। उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। मधुमक्खियों के बीच काम करने का अनुभव नहीं होने के कारण डंक मारने का डर रहता था। कई बार लगता था कि कहीं नया काम नुकसान में न चला जाए, लेकिन दोनों भाइयों ने काम सीखना जारी रखा। समय के साथ मधुमक्खी को संभालने का तरीका आया और डर भी खत्म हो गया। रमेश ने बताया कि मधुमक्खी पालन में शहद के लिए फूलों की उपलब्धता सबसे अहम है, इसलिए मौसम और फसल के हिसाब से बक्सों को अलग अलग जगह ले जाते हैं। सरसों के मौसम में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन होता है, इसलिए इस दौरान बक्से अपने क्षेत्र में ही रखते हैं। दिसंबर में राजस्थान और फरवरी में उत्तर प्रदेश ले जाते हैं।
सेब के मौसम में कुल्लू मनाली क्षेत्र के स्थानीय व्यापारियों को बक्से किराए पर भी देते हैं। कमाई बढ़ी तो खेती से ज्यादा मधुमक्खी पालन पर भरोसा बढ़ा। रमेश ने बताया कि जब शहद का उत्पादन और आमदनी बढ़ने लगी तो उन्हें लगा कि इस काम में आगे बढ़ने की गुंजाइश है। उन्होंने पारंपरिक खेती के बजाय मधुमक्खी पालन को आमदनी का जरिया बना लिया। बक्सों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। जब मधुमक्खी पालन शुरू किया था तब आसपास के क्षेत्र में केवल 3 से 4 लोग ही इस काम से जुड़े थे। अब 30 से ज्यादा किसान मधुमक्खी पालन करने लगे हैं, यानी उनका अपना कारोबार बढ़ने के साथ आसपास के किसानों को भी इस काम से जुड़ने की प्रेरणा मिली। शहद तक सीमित नहीं रखा कारोबार। रमेश ने मधुमक्खी पालन को सिर्फ शहद उत्पादन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी फर्म का पंजीकरण करवाकर मधुमक्खी और फ्रेम की सप्लाई का काम भी शुरू किया। इसके माध्यम से प्रदेश भर के मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खियां उपलब्ध करा रहे हैं। इससे उनकी आमदनी का एक और जरिया बन गया। अब बेटे पारस ने भी पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया है। गोबर से बायोगैस और सलरी से खाद तैयार कर रहे, खेती का खर्च व रसोई ईंधन बचा रहे। महेंद्रगढ़ के राजकुमार जैविक खेती के लिए कर रहे जागरूक। हसनपुर बोचड़िया के प्रगतिशील किसान राजकुमार ने पशुपालन को ऊर्जा व जैविक खाद से जोड़कर अलग मॉडल तैयार किया है। उन्होंने 5 पशुओं के गोबर से घर में 6 क्यूबिक मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाया। 14 माह से रसोई गैस इसी से चल रही है। प्लांट से निकलने वाली सलरी खेत में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल हो रही है। 1 लाख रुपए की लागत से प्लांट बनवाया था। उन्होंने इसे जमीन से करीब 6 फीट ऊंचा बनवाया। दोस्त के घर अंडरग्राउंड बायोगैस प्लांट देखा था। उसमें पानी, गोबर डालने व प्लांट से सलरी निकालने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने अपना प्लांट जमीन से ऊपर बनवाया। प्लांट से बनने वाली गैस का उपयोग खाना पकाने, चाय नाश्ता बनाने और पशुओं का दाना पकाने में कर रहे हैं। इससे खेत के लिए प्राकृतिक खाद और रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करने का अवसर मिल रहा है। इस प्रयोग को देखने के लिए आसपास के गांव से भी ग्रामीण पहुंच रहे हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सके। स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब अम्बाला।

0: जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक

0: सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूं सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सके। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा।
1: वरना ये दुनिया जीन नहीं देगी, खान नहीं देगी, पीन नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे।
0: आज हम बात करेंगे कि सफल होने के लिए आपको अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। यह कहने का मेरा मतलब है कि आपको सफल होने के लिए अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम गौर करें तो इंसान आदतन आलसी होता है, उसकी नेचर में ही मस्ती है और मस्ती करने में उसको बहुत मजा आता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कहा जाए 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए तो वह बड़ी मस्ती में देखेगा, लेकिन अगर किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही उसको नींद आने लगती है, जबकि उसको पता है कि इस किताब में जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं, और यह भी कि इस किताब को पढ़ने से उसको जिंदगी में सफल होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा कठोर तो होना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं किया तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहे।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और जरूरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे समाज की सेहत से जुड़ा है। वो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026।
0: बिल्कुल अनु, यह इस साल का 9वां राष्ट्रीय पोषण माह है और इस बार इसकी थीम रखी गई है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। ये अभियान 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है।
1: और श्रोताओं, इसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से किया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है।
0: अनु, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है, इस बार ये थीम ही क्यों चुनी गई है?
1: देखिए भारत जी, इसके पीछे एक बहुत साफ सोच है। पहले जब भी पोषण अभियान की बात होती थी तो लोग यही समझते थे कि यह सिर्फ सरकार का काम है, आंगनवाड़ी केंद्र चलाना, वहाँ खाना बंटवाना, यह सब सरकारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों का सुपोषण और सर्वांगीण विकास केवल सरकार का नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
0: यानी यह सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए थीम में हमारी शब्द जोड़ा गया, यह बताने के लिए कि आंगनवाड़ी केंद्र किसी दूर की सरकारी इमारत नहीं बल्कि हमारे अपने मोहल्ले, हमारे अपने गांव का हिस्सा है और इसे बेहतर बनाना हम सब का काम है।
0: तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई आंगनवाड़ी केंद्र है तो उससे अपनाइए, वहां जाइए, वहां की जरूरतों को समझिए, यही इस थीम का असली संदेश।

0: आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
1: इसका मतलब क्या है अनु, थोड़ा समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसका मतलब है बेहतर भवन, पीने के पानी की सुविधा, चालू हालत में शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बेहतर माहौल। सरकार ने तो आंगनवाड़ी भवन निर्माण की लागत भी बढ़ाई है। पहले

0: राशि 12,000 रूपए थी उसे बढ़ाकर 36,000 रूपए कर दिया गया है ताकि केंद्र मजबूत और सुविधाजनक बन सके।
1: और गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं ना?
0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अनु, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं, बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं।
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं।
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हम सफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं वो हमारा मेन कारण होता है, जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेडलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है,
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात को रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पे उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस डिजीज, सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
3: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
4: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
3: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
4: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
3: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
5: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे।

सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अम्बाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। कभी 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गाँव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अम्बाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अम्बाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अम्बाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अम्बाला की कहानी अम्बाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अम्बाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अम्बाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अम्बाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अम्बाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अम्बालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: नब्बे आशारिया सिफर एफ एम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: तो शुभ होजान 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हो।
3: पेश है कार्यक्रम नारी एक दर्पण, एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती स्नेहलता जी, प्रस्तुत करेंगे आरजे सिजल।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आप सभी का स्वागत है नारी एक दर्पण अंक 4 में, आरजे सेजल के साथ। और आज के इस दर्पण में हम देखने की कोशिश करेंगे समाज के कुछ और पहलुओं को नारी के संदर्भ में, हमारी आज की मेहमान स्नेहलता जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्नेहलता जी। पहले तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप अपना तारुफ खुद ही दें, ताकि वह भी आपसे अच्छे से परिचित हो जाएं।
5: नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहलता, मैं एज अ वर्किंग वुमेन काम करती हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन है MBA
4: जी। और स्नेहलता जी, कोई भी आगे सवाल करने से पहले ये चीज पूछना चाहूंगी कि आपके दृष्टिकोण में नारी सशक्तिकरण को आप कैसे डिफाइन करती हैं या कैसे देखती हैं?
5: नारी का आज के समय में सशक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जो हमारे बच्चे भी हैं, अगर हम सशक्त होंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे, उनका अच्छे से गाइडेंस कर पाएंगे, जिसके कारण वो आगे अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे।
4: जी बिल्कुल। साथ ही आप एक वर्किंग वुमेन हैं, और आज के इस मॉडर्न समय में आपको लगता है कि एज अ वर्किंग वुमेन कभी कभी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आज के समय में भी?
5: वर्किंग वुमेन को थोड़े से इश्यूज आते हैं
4: जी,
5: ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इश्यू आते हैं, और ये भी नहीं है कि आते ही नहीं
4: जी।
5: वर्किंग वुमेन को घर और बाहर दोनों संभालने के लिए टाइम की भी जरूरत पड़ती है और सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है
4: जी। बिल्कुल,
5: जब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है तभी वो बाहर जाके वर्किंग कर सकती है।
4: और कहीं ना कहीं इसमें जो बच्चे होते हैं उनका साथ भी लगता है कि जरूरी होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग,
5: बच्चों की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाते हैं और यही कि हमारे बच्चे पीछे से अपना काम अच्छे से करें, तो और फैमिली और बच्चों दोनों का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा
4: जी। और साथ ही एक वुमेन आजकल इंडिपेंडेंट हो रही है, सब्जेक्ट भी हमारा यही है, तो आपको लगता है कि अगर वुमेन इंडिपेंडेंट होती है तो उससे कहीं ना कहीं समाज में या हमारे देश में बदलाव आ रहा है या आता है?
5: नहीं, जब नारी इंडिपेंडेंट होती है तो उससे हमारे समाज में बहुत ज्यादा बदलाव आता है
4: जी।
5: जैसे हम अपने ही आसपास देख लेते हैं कि अगर नारी अपने में यानी सशक्त है तो उसको बाहर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और वर्किंग में वो जाती हैं और घर में भी उनको सपोर्ट मिलता है। और ये नहीं है कि अगर आप वर्किंग हैं या वर्किंग नहीं है, आपका दोनों ही सूरत में सशक्त होना जरूरी है कि आप अपने घर को अच्छे से हैंडल कर पाए।
4: जी बिल्कुल। और जैसे मैन वुमेन आज के टाइम पर दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों के सरवाइव करने के लिए अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रगल दोनों कर रहे हैं अपनी जिंदगियों में वो इक्वल है या कहीं ना कहीं दोनों की जर्नी अलग है?
5: इक्वल है, क्योंकि पहले के समय में ऐसा था कि सिर्फ मेल काम करता था
4: जी
5: और वुमेन सिर्फ अपना घर चलाती थी, घर को देखती थी, लेकिन अब समय और परिस्थिति बदल रही है, अब मैन और वुमेन दोनों ही वर्किंग में जा रहे हैं, तो इसलिए दोनों के स्ट्रगल काफी हद तक सेम होते जा रहे हैं।
4: जी
5: ठीक है
4: ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे समाज में ये धारणा भी थी पहले कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है विमेन को काम नहीं करना चाहिए, और अगर औरत जो है बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। और आज के समय में पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, और कई एक्ट्रेसेस भी सामने आई हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी में काम किया है, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद भी काम किया है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि बतौर समाज का एक हिस्सा और एक औरत के तौर पर आप इसके बारे में क्या सोचती हैं?
5: एज अ वुमेन मैं ये सोचती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें वर्किंग करनी चाहिए।
4: जी
5: इससे एक तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, क्योंकि हम वर्किंग में रहेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। दूसरा हमारा मेंटली स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि जब पर्सन घर पे रहता है तो वो सिर्फ घर के बारे में ही सोचता है और घर की टेंशन्स ही आती हैं उसके दिमाग।
4: जी।
5: लेकिन जब पर्सन बाहर निकल जाता है तो दो बंदों से मिलेगा तो अच्छी बातें भी सुनेगा और बुरी बातें भी सुनेगा, ठीक है
4: जी।
5: तो वो अपने स्ट्रेस को भूल जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है बाहर के एनवायरमेंट को देख के। इसलिए वुमेन को प्रेगनेंसी में वर्क करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो।
4: जी।
5: लेकिन स्ट्रेस लेने के लिए काम नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं मुझे काम करना है और मैं स्ट्रेस लेके काम कर रही
4: हूँ,
5: वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक है, आप इजी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वर्क करना चाहिए डेफिनेटली।
4: और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर हम बाहर जाते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है?
5: बिल्कुल होती है। नई लोगों से मिल के आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि एज अ वुमेन अगर आप घर घर में रहती हैं तो घर का एनवायरनमेंट आपके लिए ऐसा हो जाता है, कभी कभी आपको क्या कह सकते हैं कि गुस्सा भी आता है किसी किसी बात पे, लेकिन आप वो निकाल नहीं पाते गुस्सा, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर आप वर्किंग में हैं तो आप बाहर जाएंगे, किसी से बात करेंगे, घर की टेंशन आप घर में ही छोड़ के जाते हैं और वर्किंग की टेंशन आप वर्किंग में
4: लेते हैं। जी। और हमेशा ये कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आज के समय में स्त्रियां भी काम कर रही हैं, तो पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन में या जो फीमेल्स वर्किंग हैं उनके जीवन में मेल का कितना रोल रहता है, या कितने प्रतिशत पुरुष हैं जो उनका साथ देने में आगे आते हैं, और क्या अब ये कहावत दोनों के लिए कॉमन कर देनी चाहिए?
5: बिल्कुल, ये कहावत दोनों के लिए कॉमन कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी मेल के पीछे फीमेल का हाथ है तो फीमेल के पीछे भी उसकी फैमिली का हाथ है।
4: जी।
5: उसको हम यानी ये कह सकते हैं कि हाँ उसकी फैमिली सपोर्ट करती है, उसका हस्बैंड या उसके ब्रदर सिस्टर या फादर उसको सपोर्ट करते हैं, तभी वो आगे सक्सेस होता है।
4: जी। और एक चीज काफी समय से दिखाई जाती है, जैसे अगर हम अपने सिनेमा की ही बात करें तो सिनेमा में काफी जो पुरानी फिल्में थी उनमें भी दिखाया जाता था कि कहीं ना कहीं औरत की सफलता में एक औरत ही बाधा होती है, और ये चीज जो है आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदल चुकी है, या है या नहीं है, आपने कभी इस चीज को महसूस किया है?
5: बिल्कुल, आज के समय में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। वो पहले का दौर था कि औरत औरत की दुश्मन थी, आजकल आप अपने फैमिली में देखेंगे तो आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट ही करते हैं।
4: जी बिल्कुल,
5: 90% ऐसा होगा कि आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं, 10% में भी ऐसा हो सकता है कि सपोर्ट नहीं करते। तो औरत औरत की दुश्मन नहीं होती, ये सिर्फ यानी पर्सन की अपनी
4: वहम कह सकते हैं,
5: उनकी अपनी सोच कह सकते।
4: जी। और एक और चीज पूछना चाहूंगी, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है एक मूवी का कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है इस डायलॉग पर, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी इस डायलॉग के ऊपर भी और इस डायलॉग का जो पर्सपेक्टिव है उस बारे में भी?
5: ये कह सकते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये फिल्मी डायलॉग है
4: जी,
5: लेकिन रियल लाइफ में मर्द को भी दर्द होता है।
4: जी
5: ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो दर्द सभी को होता है, एज अ ह्यूमन सभी बंदों को दर्द होता है, उसमें ये कैटेगराइजेशन आप नहीं कर सकते कि नहीं मेल है या फीमेल है, उसको दर्द हो गया या नहीं। लेकिन ये भी जरूरी है कि मेल अपना दर्द शो नहीं करता, वो दुनिया के सामने अपने दर्द को दिखाते नहीं है, लेकिन अपने भी दर्द तो सभी को।
4: बिल्कुल, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस व्यक्त करना, अपने भावों को जताना जरूरी है?
5: बिल्कुल, अपने भावों को जताना जरूरी है। जब तक आप अपने इमोशंस को दूसरे के आगे दिखाएंगे नहीं, दूसरे पर्सन को पता कैसे चलेगा?
4: जी बिल्कुल, अभी और भी बातें जारी रहेंगी इसी तरह, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़े गीत की भी यहाँ पर जरूरत है, थोड़े म्यूजिक की भी जरूरत है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका कौन सा पसंदीदा गीत है जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी?
5: एक सॉन्ग है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नारी एक दर्पण में। उम्मीद करती हूँ जो अभी आपने गीत सुना होगा आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। तो अब वापस चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और स्नेहलता जी से और भी सारी बातें करते हैं। अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मी टाइम और सेल्फ लव की। स्नेहलता जी, हमारी जनरेशन का ये कहना है कि मी टाइम यानी कि खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आप एक वर्किंग वुमेन हैं और साथ ही घर भी संभालती हैं, तो क्या आप अपने लिए समय निकाल पाती हैं और क्या अपने लिए समय निकालना जरूरी समझती हैं?
1: अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक आप दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकते। लेकिन एज अ वुमेन मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे पास में अपने खुद के लिए समय नहीं होता, मेरे पास में बाकी सब चीजों के लिए समय है। अगर मुझे यानी अपने काम करने हैं बिल्कुल टाइम टाइम सारे काम होंगे, बच्चों के, पेरेंट्स के या फैमिली के, किसी भी काम में मैं लापरवाही नहीं करती। लेकिन जहाँ अपनी बात आती है तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में करते हैं।
0: तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपको मौका मिले अपने लिए टाइम निकालने का, अपने लिए कुछ करने का, तो वो क्या चीजें होंगी जो आप करना चाहेंगी?
1: अगर मुझे अपने लिए समय निकालने का टाइम मिले तो मैं पेंटिंग करना चाहूंगी।
0: जी, तो आपको पेंटिंग का शौक है हमेशा से?
1: हाँ, तो कॉलेज टाइम में हम करते थे, लेकिन अब नहीं करते, अब टाइम नहीं है अपने लिए। कॉलेज टाइम में वही बात है, सेल्फ लव।
0: हाँ जी,
1: उस टाइमिंग में हमारा सेल्फ लव था, जब हम अपने आप से प्यार करते थे हमारे पास में समय भी होता था। क्योंकि फैमिली में ठीक है, घर वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा हैं, ब्रदर्स, लेकिन हम अपने बारे में सोचते थे
0: जी।
1: लेकिन आफ्टर मैरिज पर्सन अपने बारे में नहीं सोचते, यानी बच्चे वगैरह, फैमिली, हस्बैंड, माता, सारी चीजों में ऐसे फंस जाता है कि वो उनके बारे में ही सोचता है, अपने बारे में सोचने का उसको समय ही नहीं।
0: तो अब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं फीमेल्स एक एज के बाद अपनी बॉडी इमेज को लेकर, खासतौर पर आफ्टर प्रेगनेंसी, एक इशू आ जाता है, कहीं ना कहीं बॉडी हमारी चेंज होती है उस दौर के बाद, तो कॉन्शियस हो जाती है अपनी बॉडी को लेकर। अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कहें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से सोचे, अगर हम सोचे कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम हमारा काफी गिरता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय रखेंगे?
1: आप जब किसी भी बच्चे को नया जन्म देती हैं, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, उस टाइमिंग में आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि आपका बेबी ठीक ठाक इस दुनिया में आ जाए।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन जब बेबी आने के बाद में आपको जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको कुछ भी नहीं करना आएगा, बच्चों को संभालना तक नहीं आएगा कि उसको कैरी कैसे करना है, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आप बच्चे को टच करने के बारे में सोचोगे तो भी आपके हाथ टच करूं या ना करूं, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट सा होता है कि कहीं हमने जोर से नहीं पकड़ लिया तो
0: उसको कुछ ना हो जाए। हाँ।
1: लेकिन जहाँ फिर अपनी बात आती है, प्रेगनेंसी के बाद में आपका बेबी हो गया, उसके बाद में जब आप अपने खुद के बॉडी को देखते हो या खुद के बारे में सोचते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी अपने बारे में सोचना, फिर वो अपने हेल्थ के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर प्रेगनेंसी के बाद में, प्रेगनेंसी के टाइमिंग में बिल्कुल चेंज हो जाता है, वेट भी आप गेन करोगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन वो आप प्रेगनेंसी के बाद में जल्दी से लूज नहीं कर पाते। उसको लूज करने के लिए आप अगर नॉर्मल तरीके से करोगे तो कम से कम 1.5 से 2 साल लगते
0: हैं। जी
1: ठीक है, और इतने टाइम तक आप अगर वेट करना चाहोगे कि 2 साल जब तक आपका बच्चा फीड कर रहा है तब तक आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं है, बहुत लिटिल लिटिल है, फीडिंग छुड़वाने के बाद में फिर आप अपने एक्सरसाइज के बारे में या अपनी डाइट के बारे में सोच सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, और मुझे लगता है इस दौरान जैसे कई फीमेल स्ट्रेस ले लेती हैं अपनी बॉडी को लेकर, वो भी हमें कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहिए,
1: नहीं
0: है ना?
1: लेना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे थे ना, मदर होना एक अलग ही फीलिंग होती
0: है। जी बिल्कुल,
1: तो उस शब्दों को हम बयान नहीं कर सकते उस फीलिंग को।
0: और आज के समय में हम ये भी कहते हैं कि लड़कियां जो हैं फीमेल हर एक फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, लेकिन अभी ऐसी भी जगहें हैं या कह लीजिए कोर्सेज हैं जहाँ पे विमेन परसेंटेज बहुत ही कम है। जैसे हम मैकेनिकल कोर्स में भी दे सकते हैं कि लड़कियां काफी कम जाती हैं उस तरफ, या जब बात आती है कि एक लड़की के आउट ऑफ सिटी जाकर काम करने की या हायर पोजीशन पे जाकर काम करने की या इक्वल पे की, तो वो अपॉर्चुनिटी उन्हें बहुत ही कम मिलती है या बहुत ही कम देखने को मिलता है कि उस पोजीशन पर वो ज्यादा समय तक रह पाए। तो एज अ वुमेन और एक पेरेंट के तौर पर भी आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
1: मैं इस बारे में यही कहूंगी, एज अ पेरेंट्स आपके आपको अपने बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये आपका बच्चा बेटा है
0: जी
1: और ये बेटी है। आपको दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए एज अ फीमेल कि मेरी बेटी है तो मैं उसको बाहर कहीं जॉब पे ना भेजूं या उसको ऐसे फील्ड में एडमिशन ना दिलाऊं जहाँ पे आगे उसको जाके अलग से रहना, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि अगर अभी हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे आपने मैकेनिकल का कहा
0: जी,
1: मेरी बेटी बीटेक करना चाहती है
0: जी,
1: ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूं कि नहीं बीटेक नहीं करनी क्योंकि बीटेक के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको बाहर नहीं भेज, तो ये मेरा विचार गलत होगा अपनी बेटी के लिए। क्योंकि एक तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं
0: हाँ जी,
1: कि मेल फीमेल दोनों इक्वल है, वो समय अलग था जब आप इक्वल नहीं थे, हमारे मम्मी पापा या उनके मम्मी पापा उस टाइमिंग में होता था कि हाँ, लेकिन हमारे जेनरेशन में हमारे पेरेंट्स ने हमें इक्वलिटी का पाठ पढ़ाया, जितनी एजुकेशन हमारे ब्रदर सिस्टर्स को मिली है उतनी ही हमें मिली है। तो भाई बहन में अंतर उन्होंने नहीं किया तो हम अंतर करने वाले कौन
0: जी? बिल्कुल,
1: इसीलिए बेटा हो या बेटी दोनों को फ्री कर दो, इक्वल उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, संस्कार दोनों में सेम होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बेटा है तो वो बाहर जाके मिसबिहेव करे किसी भी फीमेल से।

0: की जो वर्किंग प्लेसेस हैं हमारे, वहां पे आपको एज अ फीमेल थोड़ी सी फैसिलिटी और दी जानी चाहिए
1: जी,
0: कि आप स्ट्रेस महसूस कर रही हैं प्रेगनेंसी वगैरह अगर आपकी है तो आपको रिलैक्सेशन करने के लिए थोड़ा सा अलग से कॉर्नर होना चाहिए
1: जी,
0: कि आप वहां पे जाके रिलैक्स कर सके, या आप आपका बच्चा पे अकेला नहीं रह सकता, आपको उसको फीड भी करवाना है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आपको, वैसे तो गवर्नमेंट देती है आपको वन आवर का टाइमिंग देती है, कि अगर आपके स्टार्टिंग में भी वन ईयर का टाइमिंग है कि आप वन ईयर प्रेग्नेंट हैं, यानी बेबी को डिलीवर किया है, तो वन ईयर तक आप एक घंटे का ब्रेक ले सकते हैं फीड करवाने के लिए
1: जी,
0: ठीक है। तो ये आगे और भी टाइमिंग शायद बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की केयर मम्मी से ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। और ये बात सभी जानते हैं कि जब तक बच्चा फीड करता है उसको मदर का फीड ही करवाना चाहिए 6 महीने तक, तो डेफिनेटली
1: जी जी,
0: उसके बाद में भी ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा 1 साल का हो गया 1.5 साल का हो गया आप उसकी फीडिंग छोड़वाओ। अगर आप 2.5 से 3 साल तक फीडिंग करते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और आपकी बच्ची की सेहत के लिए भी अच्छा
1: जी। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो मदर की फीडिंग होती है बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए काफी अच्छी रहती है, और साथ ही गवर्नमेंट भी ऐसे प्रयास कर रही है, काफी सारी स्कीम्स लेकर आ रही हैं विमेन के लिए, ताकि हर एक फील्ड में वो कंफर्टेबली काम कर सके और विमेन का परसेंटेज जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में है वो ज्यादा रहे।
0: बिल्कुल, अभी में भी रोहतक साइड में अलग से एक केबिन बनाया गया है, एक बिल्डिंग बनाई गई है कि मदर वहां पे जाके अपने बच्चे को कंफर्टेबल होके फीड करवा सकती है
1: जी।
0: क्योंकि जैसे हम अपने समाज में देखते हैं कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि जो वर्किंग वुमेन है या कहीं पे भी हम ट्रेवल करते हैं तो हम अपने बच्चे को साथ में कैरी करते हैं, लेके जा रहे हैं, तो हमें वो स्पेस नहीं मिलता,
1: एक कंफर्ट चाहिए,
0: कंफर्ट जोन हमें मिल ही नहीं पाता। तो अब ये सरकार सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। बिल्कुल, अब और बातें भी करेंगे लेकिन अब वक्त है एक और गीत का। अब इस समय आप कौन सा गीत अपना पसंदीदा सुनाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को?
0: आपने सुना होगा रात अकेली है
1: जी,
0: बुझ गई थी
1: जी जी जी, ये भी लाइक गुनगुना सकती हैं, लो लाइट अगर हो जाए इस गीत की तो।
0: रात अकेली है बुझ गई थी आके मेरे पास,

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी एक दर्पण आरजे सेजल के साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। समाज और नारी से जुड़े काफी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। अब इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं इसके अंत की ओर। काफी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे कि सेल्फ लव, विमेन स्ट्रगल और सोसाइटल मिथ्स के बारे में भी। अब थोड़ा मोटिवेशन की ओर बढ़ते हैं। स्नेहलता जी, हमारी जिंदगी में काफी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें डाउनफॉल, फेलियर, स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। आपने भी कभी ना कभी अपने लाइफ में इन चीजों को महसूस जरूर किया होगा। तब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए और मोटिवेशन के लिए क्या किया, जिसे सुन जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं या महिलाएं आपको सुन रही हैं, वह भी अपने आप को मोटिवेट रख सके।
1: ये फेस सभी की लाइफ में आता है, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है
0: जी।
1: जो आप कभी बचपन में करते थे।
0: ये
1: जरूरी नहीं कि बहुत इफेक्टिव हो, लेकिन छोटी छोटी चीजें। अगर आपको खेलना पसंद है तो आप खेलें, आपको मूवी देखना पसंद है या सॉन्ग सुनना पसंद है तो वो कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा असरदार है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। मैं जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं अपने बच्चों के साथ में बैडमिंटन खेलती हूँ
0: जी,
1: या फिर वो खेलते हैं पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो बच्चों के साथ में खेलना भी बहुत अच्छा है कि अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए।
0: जी बिल्कुल। और आज के समय में ऐसा कौन सा बदलाव है जो आप एक फीमेल में चाहेंगी या फीमेल को अपने अंदर लेकर आना चाहिए?
1: फीमेल को अपने अंदर बदलाव ये लेके आना चाहिए कि उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए
0: जी।
1: कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है सभी में। ये जरूरी नहीं है कि वर्किंग वाले ही कॉन्फिडेंट हो, सभी लेडीज में, औरतों में, महिलाओं में आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना चाहिए
0: जी। मुझे लगता है जहाँ तक जो होम मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं घर में रहकर एक उसी एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो जाती हैं।
1: बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाती है,
0: तो बाहर जाकर कहीं ना कहीं उन्हें कभी कभी दिक्कत महसूस होती है इन सब चीजों में।
1: बहुत बार ऐसे पर्सन को देखते हैं जो घर में बहुत अच्छे से हाउस मेकिंग करती है, लेकिन जब वो पब्लिक में हमारे पास में आती है तो वो अपने क्वेश्चन इजिली बोल नहीं पाती कि वो चाहती क्या है। तो उनको अपनी बात रखने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: तो आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें क्या चीज करने की जरूरत है?
1: अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि
0: जी,
1: अगर महिला घर में काम करती है, हाउसवाइफ है, तो उसकी फैमिली को उसको बाहर भी लेके जाना चाहिए। क्योंकि काफी फैमिलीज ऐसी होती है कि नहीं डियर, तुझे मैं कैसे बाहर लेके जाऊं, तू तो वर्किंग में नहीं है, मैं तुझे अपने साथ में फील्ड में लेके, यानी अपने फ्रेंड सर्कल में लेके जाऊंगा तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप अगर अपने वाइफ को या अपने माता पिता को या किसी को भी बाहर लेके जाते हैं तो उनको कंफर्टेबल फील करवाए, तभी उनमें कॉन्फिडेंस आएगा
0: जी। बिल्कुल।
1: ये जरूरी नहीं है कि उनका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा है या वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। आप उनकी लैंग्वेज में ही उनसे बात करें तो वो कॉन्फिडेंस फील करें।
0: और अगर बदलाव की ही बात करें, इसे आगे बढ़ाएं, तो एक शब्द है फेमिनिज्म, और जो इक्वालिटी की बात ही करता है लगभग, और इस शब्द को इक्वालिटी से ही जोड़ा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस शब्द की, फेमिनिज्म शब्द की अभी हमें जरूरत है, और इसके मतलब को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं?
1: इक्वालिटी आप ये कह सकते हैं मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं
0: जी,
1: लेकिन कहीं ना कहीं आज की दुनिया में भी ये विचार है किसी किसी पर्सन के दिमाग में कि नहीं, ये फीमेल है, ये वो चीज नहीं कर सकती। तो वो चीज गलत है। वुमेन सारी चीजें कर सकती है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, और बातें और भी हैं हमारे पास करने के लिए, लेकिन वक्त हमारे पास सीमित है, तो इसी को यहीं पर हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं इस कार्यक्रम को। और आज 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से आप समाज को और हमारे श्रोताओं को, साथ ही खास तौर पर जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं फीमेल को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास करें, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने अंदर विश्वास नहीं रखेंगी कि हाँ हम ये कर सकते, तो आपकी लाइफ इजी रहेगी। अपने अंदर बिलीव कीजिए।
0: जी बिल्कुल। और अब एक आखिरी सवाल कि आज की वार्ता करके 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो दस्ता में आकर आपको कैसा लगा?
1: आज मुझे आके बहुत अच्छा लगा। पहले मैं आके नर्वस थी, लेकिन आपके साथ में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
0: और अब एक आखिरी गीत की ओर चलते हैं। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और एक और हम गाना सुनना चाहेंगे, एक आखिरी गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें।
1: सॉन्ग है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: ओके, अब मुझे दीजिए इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में जल्द ही। अगर आप किसी भी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर दे सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहें 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, और छोड़े जा रही हूँ आपको एक गीत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
1: धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
2: झुमका गिरा रे हाय झुमका।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान थे श्रीमती स्नेहलता जी, जिनके साथ बातचीत कर रहे थे आरजे सेजल। रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अम्बाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अम्बाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अम्बाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अम्बाला की कहानी अम्बाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अम्बाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अम्बाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अम्बाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अम्बाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अम्बालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta. हम सफर जिंदगी का

आदाब, नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे, मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख

मुझे अपने साथ ले जाता पत्थरों के शहर में, जहां बरसों पहले मैंने तराशे थे। बोलते मुजस्सम और पत्थरों के खुदा, जिनकी इबादत में हर कोई है मसरूफ, और उठते ही सदा दुआओं में हाथ।

मेरा अतीत मेरी माजी के वो पल जिसमें मैं मिट्टी के खिलौनों से खेलता था, दौड़ता था, भागता था, हंसता था, पेड़ों की टहनियों से झूला झूलता था। बारिश की बूंदों को अपनी कच्ची मुट्ठी में कैद करता था। सिर्फ एक बार लौटा दे मुझे मेरा बचपन, जो गलतियां हुई अब उनको न दोहराऊंगा, किसी से न रूठ जाऊंगा, किसी को न रूठने दूंगा, किसी से न शिकवा करूंगा और न किसी को शिकायत का मौका दूंगा, मगर मुझे लौटा दो मेरा बचपन, तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल, तुम्हारे नीले दुपट्टे के छांव तले गुनगुनाना चाहूंगा। तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में

किसकी सूरत अब इस शीशे में उतारूं? टूट गया आईना, टुकड़े टुकड़े हो गया, जुबां बंद हो गई।

नजर खामोश, चारों ओर पसरा है सन्नाटा। शायद फरामोश करना तुम्हारी आदत है, यूं ही पल पल हर पल मिटते रहे बेवजह।

भीगती बरसातों में तुम भीगते रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, दूर से ही सही तुम्हें निहारता रहूं। चांद भी इन बादलों से चीर के निकल आया है तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए। गरजते बरसते ये बादल ये हवाएं तुम्हारे गेसों तुम्हारे रुखसार को छूने में है मुंतजर। चले आओ अपनी मुस्कुराहटों के संग, यहां खेले लुक्का छुपी और मुस्कुराए इन फिजाओं के साथ साथ।

0: बोलिए आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, जरूर बताइएगा। अब अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्ते।
1: हर मोड़ पा हंसी खुशी और मीठे मीठे सुरा की तान, सीधे थारे दिल पर चोट मारेगी। यो सै रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पा, जिंदगी का सांझा साथी, थारे जी का सच्चा आधार। बस गेल बने रहो और जिंदगी के पूरे मजे लो।
2: जय श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:50। धूप ढल गई है और हमारी आज की ये प्यारी सी गुप्तगू अब समेटने का वक्त आ गया है। आशा है इन लम्हों ने आपके मन को छुआ होगा और आपके दिन में अपनेपन की एक नरम सी रोशनी भर दी होगी। खैर, आज जो मौसम भी बदल गया है और मौसम भी सुहाना होने लगा है कुछ महीनों के लिए, और गर्मी से हमें राहत मिलेगी, पर सर्दी में आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। दोस्तों, आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक बेहद सार्थक और महत्वपूर्ण दिन है। आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये दिन हर साल बालिकाओं के अधिकारों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पूरी टीम की ओर से देश दुनिया की सभी बेटियों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर पर दोस्तों आज बात करते हैं एक बेहद प्रेरणादायक विषय पर। आज का विषय है बेटियों को बराबरी का अवसर देना ही एक सशक्त और प्रगतिशील समाज की पहचान है। आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी बालिक काबिलियत का परचम लहरा रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, विज्ञान हो या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान हो। जब जब बेटियों को सही शिक्षा, सही अवसर और सही माहौल मिला है, उन्होंने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे समाज और देश का नाम रोशन किया है। आज जरूरत है कि हम हर बेटी को यह भरोसा दिलाएं कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं है और उससे वो हर अवसर और सम्मान दें जिसकी वो हकदार है। बेटियों का सशक्तिकरण केवल सरकार या स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हर परिवार और हर घर के सदस्य से शुरू होता है। जब माता पिता अपनी बेटियों को बेटों के बराबर अवसर देते हैं, उनके सपनों का सम्मान करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तभी समाज में सच्ची सम्मानता आती है। एक शिक्षित और सशक्त बेटी न केवल खुद आगे बढ़ती है, बल्कि अपने साथ पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी अलग से आगे ले जाती है। तो ये था आज का विषय। कुछ पंक्तियां आप सभी के नाम, आज की पंक्तियां यूं है, बेटियां हैं कल का उजियारा, आज की पहचान। बेटियां हैं कल की उजियारा, आज की पहचान, इनके सपनों को उड़ान दो, यही है सच्चा सम्मान। वितस्ता भी तो बिना रुके आगे बढ़ती चली जाती है, यही सिखाती है बेटी भी हर घर की असली शान है। दोस्तों, जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण दूंगा। कल 12 अक्टूबर 2026 सोमवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करते हैं शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, और कल इन दिनों शारदा नवरात्र चल रहे हैं, उसके साथ जुड़े कथाएं और कविताएं, और आपको हम भजन सुनाएंगे। 7:05 पर होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा एपिसोड 4। हमारे साथ होंगी श्वेता शाह, पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय। कल आप सुनेंगे एपिसोड 10 दुलारा, पेश करेंगे नरेश शर्मा, 9:30 बजे दोस्ती अनमोल एपिसोड 2 पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 10 बजे होगा कार्यक्रम काव्य गोष्ठी, हमारे साथ होंगी डॉक्टर सुरेश कुमार वारियद। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल, और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16। शीर्षक होगा वफा, पेश करेंगे आरजे किरनी, और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है अंधेरों से रोशनी की उम्मीद। आशा करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपके मन में बेटियों के प्रति सम्मान और प्रेरणा की एक नई भावना जगा गया होगा। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।